कोई बणत बना के एक किचल दूजा सत पाल कर वेच बला के एक किचल दूजा सत पाल कर

0: सिमरन कबहु का प्रभ के सिमरन कार्य पूरे
1: प्रभ के सिमरन कबहु न छूरे
0: प्रभ के सिमरन हर गुण बानी
1: प्रभ के सिमरन सहज समानी
0: प्रभ के सिमरन निहचल आसन
1: प्रभ के सिमरन कमल विकासन
0: प्रभ के सिमरन अनहद चुनकार
1: सुख प्रभ सिमरन बिना पार
0: से सिमरे जिन आप सिमराए
1: नानक ताके नानक
2: से जन जिन का प्रभ मैं
1: नानक तिन जन सन्नी पिया
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए
1: हर सिमरन लग वेद पाए
0: हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते
1: हर सिमरन नीचो फुट जाते
0: हर सिमरन तारी सब धरना
1: सिमर सिमर हर कारण करना
0: हर सिमरन की

0: हर का नाम जपत होए सुखिया।
1: लाख करोड़ी बंधन परे
0: हर का नाम जपत निस्तरे।
1: अनेक माया रंग तेखना बजावे
0: हर का नाम जपत आवे।
1: हे मारगे जात अकेला
0: हर नाम संग होत सुखिया।
1: ऐसा नाम मन सदा त्याइए
0: नानक गुरमुख परम गत पाइए।
1: उठत नाही कोट लख बाही
0: नाम जपत पार प्राही।
1: अनेक विघन जाए आए संगारे
0: हर का नाम तत्काल हरे।
1: अनेक जो

0: गुनगुन कशु न
1: बुझे तो
0: हे प्रसाद तर ऊपर सुख बस है हे प्रसाद पी वह शीतल जला
1: सुखदाई पवन
0: हे प्रसाद भोग है सब रसा
1: सामग्री संग साथ बसा
0: इने हस्त पाव कर नेत्र रसना
1: इसे त्याग संग रचना
0: ऐसे दुख मूड अंध व्यापे
1: नानक काट लियो
0: आद अंत जो राखन।

0: अंधा कैसे मार्ग पावे,
1: वहाँ
0: बाजार से बुझे ढोरा,
1: वहाँ
0: बिशन पद पगावे घुंग, पिंगल पर्वत पर पवन
1: नहीं हो तुम्हारा उस हवन,
0: तार करना मैं दीन बेनती करे,
1: तुम्हारी कृपा करे,
0: संग सहाई सो आवे न चीत,
1: जो बैराई का सम्मिलित,
0: बुआ के ग्रह पितर बसे,
1: अंध के माया रंग रसे,
0: उड़कार माने मन है प्रतीत,
1: आवे मुड़े चीत,
0: मैर विरोध काम क्रोध मोह,
1: झूठ विकार महालोक करो।

0: प्रभ जाता
1: नान कौन जन जन पराता
0: करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने
1: अपना किया आपे माने
0: आपे आप करत न बेरा
1: किसे दूर जनावत किसे बजावत मेरा
0: पाव स्याणप सगल ते रहत
1: सब कुछ जाने आत्म की रहत
0: जिस पावे ते

0: जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे
1: को रख मन माहे।
0: जय प्रसाद सुगंधित तन लाभ है
1: इसको सिमरत परम गत पावे।
0: जय प्रसाद बस है सुख मंदिर
1: जिसे ध्याए सदा मन भर।
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पैर सिमरो सदसना।
0: जय प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा ध्याए रावण जोग।
0: जय प्रसाद पाठ पटंबर हडाव है
1: जिसे त्याग का चावन
0: भावे। जय प्रसाद सुख सेज सोई जय
1: आठ पैर का काज जस गावे।
0: जय प्रसाद तुझ सब को माने
1: मुक्ता को जस रसन खाए।
0: जय प्रसाद तेरो रहता धर्म
1: मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म।
0: प्रभु जी जपत दरग है मान पाव है
1: नानक पास से ही कर जाए।
0: जय प्रसाद आरोग कंचन देही
1: लेवलावो तिस राम सुनेही।
0: जय प्रसाद तेरा ओला रहत
1: मान सुख पावे हर हर जस कहत।
0: जय प्रसाद तेरे सगल सिद्र ठाके
1: मान सानी पर ठाकर प्रभु आए।
0: जय प्रसाद तुझ को ना पहुँचे
1: मान सास सास सिमरो प्रभु उचे।
0: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह
1: नानक ताकी भगत रहे।
0: जय प्रसाद अपूखण बहरी जय
1: मान दस सिमरत को आलस की जय।
0: जय प्रसाद असभ हस्त असवारी
1: मान दस प्रभु को कबहु ना सारी।
0: जय प्रसाद बाग मिलख तना
1: राख करोए प्रभु अपने मना।
0: जिन तेरी मन बनत बनाई
1: उठ बैठ सत से ध्याई।
0: सहे ध्याए जो एक अलख है
1: नानक तेरी रखे।
0: जय प्रसाद करहे पुन बहुदान
1: मन आठ पैर कर जिसा जान।
0: जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी
1: प्रभु को सा साच तारी।
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप
1: सो प्रभु सिमरो सदा अनुप।
0: जय प्रसाद तेरी नीकी जात
1: सो प्रभु सिमर सदा रात।
0: जय प्रसाद तेरी पत रहे
1: गुर प्रसाद नानक जस रहे।
0: जय प्रसाद सुनहे कर्ण नाद
1: जय प्रसाद पेखे बसमाद।
0: जय प्रसाद बोलहे अमृत रसना
1: जय प्रसाद सुख सहजे बसना।
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है
1: जय प्रसाद संपूर्ण पड़े।
0: जय प्रसाद परम गत पाव है
1: जय प्रसाद सुख सहज समावे।
0: ऐसा प्रभु त्याग अबर कत लाग हो
1: गुर प्रसाद नानक मन जाग।
0: जय प्रसाद तू प्रकट संसार
1: प्रभु को मूल न मनो विसार।
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप
1: रे मन मूल तू ताको जाप।
0: जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे
1: इसे जान मन सदा जुरे।
0: जय प्रसाद तू पाव है साच
1: रे मन मेरे तू तां सुराच।
0: जय प्रसाद सब की गत होए
1: नानक जाप जपे गत होए।
0: आप जपाए जपै सो नाओ
1: आप गवाए सो हरगुण गाओ।
0: प्रभ कृपा ते होए प्रगास
1: प्रभु दया ते हमर निवास।
0: सो प्रसन्न बसे

0: सही,
1: सार के संग मुख उज्जल होता,
0: सार संग मन सही होता,
1: सार के संग मिटे अभिमान,
0: सार के संग प्रगटे सो ज्ञान,
1: सार के संग पूजे प्रभ नेरा,
0: सार संग सब होत वीरा,
1: सार के संग पाए नाम रतन,
0: सार के संग ऊपर जतन,
1: सार की महिमा बरने कान प्राणी,
0: नानक सार की शोभा ब्रह्म है समानी,
1: सार के संग अगोचर मिले,
0: सार के संग सदा पर मिले,
1: सार के संग आवे है बस पंचा,
0: सार संग अमृत रस पंचा,
1: सार संग होए सबकी रेना,
0: सार के संग मनोहर बैना,
1: सार के संग न कतहु तावे,
0: सार संग अस्तित मन पावे,
1: सार के संग माया ते पिन,
0: सार संग नानक रस प्रसन्न,
1: सार संग दस मन समीत,
0: साधु के संग महाप्रणीत,
1: सार संग के स्यों नहीं बैर,
0: सार के संग न बिगा पैर,
1: सार के संग नहीं को मंदा,
0: सार संग जाने परमानंदा,
1: सार के संग नहीं होताप,
0: सार के संग तजे सब आप,
1: आपे जाने साध बढ़ाई,
0: नानक साध

0: ब्रह्मज्ञानी कह धीरज एक
1: योगस्ता को खोदे को चंदन एक
0: ब्रह्मज्ञानी का एह गनाओ
1: नानक यो पाव का सहज स्वभाव
0: ब्रह्मज्ञानी नर्मल ते नर्मला
1: जैसे मैल न लागे जला
0: ब्रह्मज्ञानी के मन होए परगास
1: जैसे तारु पर आकाश
0: ब्रह्मज्ञानी के भीतर सतर समान
1: ब्रह्मज्ञानी के नाही अभिमान
0: ब्रह्मज्ञानी उच्च ते उच्चा
1: मन अपने है सबते नीचा
0: ब्रह्मज्ञानी से जन पै
1: नानक
0: ब्रह्मज्ञानी सगल कीरीना
1: ब्रह्मज्ञानी जीना
0: ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर मैया
1: ब्रह्मज्ञानी से कुछ बुरा ना पाया
0: ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी
0: ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्मज्ञानी की
0: ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्मज्ञानी एक ऊपर आस
1: ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्मज्ञानी के गरीबी समाहा
1: ब्रह्मज्ञानी परोपकार महा
0: ब्रह्मज्ञानी के नाही तंदा
1: ब्रह्मज्ञानी ने साथ संबंधा
0: ब्रह्मज्ञानी के होए सो पला
1: ब्रह्मज्ञानी सो
0: ब्रह्मज्ञानी संग सगले उदार
1: ब्रह्मज्ञानी जपे सर्व संसार।

0: संसार।
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता,
0: ब्रह्म ज्ञानी सर जीवे नहीं मरता।
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जगत जी का दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सर्व ऊपर हाथ।
1: ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार।

0: नान कैसा भगवंती भगवंत को पावे।
1: ओ पंडित जो मन पर बुद्ध
0: राम नाम आत्म में सोवे,
1: राम नाम सार रस पीवे,
0: उस पंडित के उपदेश जग जिए,
1: हर की कथा हृदय बसावे,
0: सो पंडित मेरे जो नावे,
1: वेद प्राण सिमरत बुझे।

0: परवाना।
1: अपनी दास को आप कृपा करे,
0: इस दास को सब सोजी पड़े,
1: अगले संग आत्म उदास,
0: ऐसी जोत नानक राम दास,
1: आपकी आज्ञा आत्म हतावे,
0: जीवन मुक्त हो पावे,
1: ऐसा हरख तैसा उस सोग,
0: सदा नंद नहीं योग,
1: ऐसा सुवर्ण तैसी उस माटी,
0: तैसा अग्र तैसी बेखाटी,
1: ऐसा मान तैसा अवमान,
0: तैसा रंग तैसा रहान,
1: वरताए साई जगत,
0: नानक पुरख कहिए जीवन मुक्त।

0: कोट होय पुजारी कोट पे तीर्थवासी यही कोट वेद के श्रोते यही कोट आत्म ध्यान तार है यही कोट नवतन नाम त्याव है यही कोट पे अपमानी यही कोट कृपण कठोर यही कोट पर दर्प को हिरे
1: यही कोट पर दुख ना करे
0: यही कोट मा

0: कोट पवन पानी वै संतर
1: कई कोट देश भू मंडल
0: कई कोट ससियर सूर नक्षत्र
1: कई कोट देव राम इंद्र से शतर
0: सगल समग्री अपने सूत धारै
1: नानक।

0: हुक्मे तार अधर रहावे,
1: हुक्मे उपजे हुक्म समावे,
0: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार,
1: हुक्मे अनेक रंग प्रकार,
0: कर देखे अपनी वडियाई।

0: ब्रह्म विचार
1: जानकी आप मिलावण हार
0: कबहु नृत्य करे बहु भांत
1: कबहु सोए रहे दिन रात
0: कबहु महाक्रोध विकराल।

0: तत्तीर स्नान
1: प्रभु सिर सा दिक मुख ज्ञान
0: प्रभु कीट हस्त पतंग होए जिया
1: अनक जोर पर में परमिया
0: नाना रूप जो स्वाग।

0: ज्ञान परगास
1: स्थान का नहीं विनाश,
0: मन तन नाम रते एक रंग,
1: सदा बसे पार ब्रह्म के संग,
0: जो जल मह जल आए खटाना।

0: राज अभिमान
1: सो नाग पाति हो समान
0: जो जाने मैं जोबन पंत
1: सो निष्ठा कर संत
0: आपस को कर्म बंत कहावे
1: ज्ञान मय भोजन परमावे
0: धन भूमिका जो करे गुमान
1: सो मूर्ख के अंधार
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
1: नानक यहां मुदागे सुख पावे
0: धनवंता होए कर गरबावे
1: समान जो संग न जावे
0: बहु लास्कर मानुख ऊपर करे आस
1: पर होए नास
0: सब ते आप जाने बलवंत जिसे न बदे आप अहंकारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान
1: सो जन नानक दरगए परमान
0: कोट कर्म करे हो तारे
1: शरम पावे सगले बलिथारे
0: अनक तपस्या करे अहंकार
1: नरक स्वर्ग ते फैले अवतार
0: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
1: हर दर गए को कैसे लगे
0: आपस को जो भला कहावे
1: इसे भलाई निदनावे
0: सर्व की रेन जाका मन होए
1: कौ नानक ताकी निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझ ते कश होए जब एह जाने मैं किश करता जब तारे को बैरी मीत जब लग मोह मगन संग माए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे सहस खटे लख कोठ तावे अनक भोग बिखिया के करे बिना संतोख नहीं को राज्य नाम रंग सर्व सुख होए कर्ण करावण आपे आप कर्ण करावण करने हार जैसी दृष्ट करे तैसा होए
1: आपे आप
0: जो किश किन्नो सो अपने

0: पिलाए
1: यो जल भी हुन मछली तड़फड़ाए
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
1: यो पाप कीर्तन नहीं लावे
0: संत का दुखी छुटे अकेला
1: यो ग्वाल मेरे तेल माहे दोहिला
0: संत का दुखी धर्म ते रहत
1: संत का दुखी सब मिला कहत
0: कीर्त निंदक का तुर ही पया
1: नानक ज्योत सुभावे सोई दिया
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
1: संत के दुखी को दर्द मिले सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाये।

0: उत्तम कर्मान
1: कछ करे सुप्रभ के रंग
0: सदा सदा बसे हर संग
1: सहज सुभाय होवे सो होए
0: करने हार पहचाने सोए
1: रखा किया जन मीठल गाना
0: जैसा सत सत निष्ठाना
1: जस्ते उपजे तिस माहे समाए
0: ओए सुख निदान उन्हों।

0: पर साल टूटे हारोग
1: नान सोजन सदा करोग
0: मंदर का था मैं थमन
1: यो गुर का शब्द मन है समन
0: बखान नाव चढ़ तर
1: प्राणी गुर चरण लागत निस्तर
0: अंधकार दीपक प्रगास
1: गुर दर्शन देख मन होए विलास
0: महाध्यान में मार्ग पावे
1: यो साधु

0: परन जाका नेत्र पोर
1: जिसका मंत्र न जाने होर
0: आनंद रूप मंगल सद जाके राज में राज जोग में जोगी
1: ताप में कपीसर ग्रह सुने भोगी
0: आए ध्याए भक्त है सुख पाया
1: नानक तिस कुल काज ने अंत न पाया
0: राखी लीला की मित ना है
1: सरल देव हारे अलाहे
0: पिता का जन्म के जाने पूत
1: सरल प्रोही अपने
0: मत ज्ञान ध्यान जिन दे।

0: नाम के थारे सिमरत वेद प्राण,
1: नाम के थारे सुनम ज्ञान ध्यान,
0: नाम के थारे आगास पाताल,
1: नाम के थारे सगल गण,
0: नाम के थारे पुरिया सब पवन,
1: नाम के संग दे सुन सर्वन,
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए,
1: नानक चौथे पद में सो जन कर पाए,
0: रूप सत जाका सत स्थान,
1: पुरख सत केवल प्रधान,
0: दूत सत सत जाकी वाणी,
1: सत
0: कर्म जाकी रचना सत,
1: सत
0: करनी निर्मल निर्मली,
1: सत
0: नाम प्रभ का सुखदाई,
1: सत नानक बोलते पाई,
0: सत वचन साधु उपदेश, सत निरत बुझे जे कोई,
1: नाम जपता की
0: आप सत किया सब

बारंग बार बार प्रभ जपिए नाम रतन जन गुरमुख पाया नाम तन नाम रूप रंग नाम रस जो जन तिपताने उठत बैठत सोवत नाम बोलो जस हे बाजने।

0: संत जन मिल कर हो विचार
1: एक सिमर नाम ले वार
0: और अपाप सा मीत विसार हो
1: चरण कमल बिन है उतार
0: अन्न कारण सो प्रभु समरथ
1: प्रकट कर रहो नाम हर वक्त
0: यह स्थान सांचो हो वह भगवंत
1: संत जन का निर्मल मंत
0: एक आस रखो मन माह
1: सर्व रोग नानक मिट जाए
0: स्थान को चार कूठ उठतावे
1: सो तन हर सेवा के पावे
0: सुख को नित

0: गुण यार नीच अजाना।
1: नानक तुम्हारे शरण गुरु भगवान।
0: सर्व वेखंठ मुक्त मुख पाए,
1: एक निर्मुख के गुण लाए।
0: अनक राज भोग बड़े।

0: कै हर अगम अपार
1: रब
0: निर्गुण प्रभु सहज सुभाए
1: रब
0: आप है आप अपनी जोत तरै अपने चलते आप कारण हार अविनाशी सुख अपने आसन जब पूर्ण करता प्रभु सोए जब व्यक्त गोचर प्रवेक जब नाथ निरंजन गोचर गादे।

0: दिखाए
1: नानक दिलन सो जी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत
1: मन
0: माए आकाश प्याल
1: सर्वलोक पूरन प्रत पार
0: वंतन पर्वत है पार।

सिमरत मैं देख वाणी प्रभु की सबको भूले सर्व कला कर खेले खेल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत और प्रसाद परम का नास संत जना का पेखन सब ब्रह्म।

0: स परमान
1: जो
0: जाने तिस सदा सुख होए
1: आपने आए रहे प्रभु सोए
0: ओ तनवंत कुलवंत पतवंत
1: जीवन मुक्त जस हृदय भगवंत
0: धन धन।

0: कर
1: सास सास सिमरहो गोविंद
0: मान्यांतर की
1: सास नित्य त्याग हो तरंग
0: संत जना की
1: आप छोड़ बेनती करहो
0: सास संग अगर सागर रहो
1: हर तन के भर लेहो भंडार
0: नानक गौर पूरे नमस्कार
1: प्रेम कुशल सहज आनंद नरक निवार उधारो जियो चित चित बहो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग
1: गोपाल दामोदर दीन दयाल
0: पंजन पूरन के पाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का
1: उत्तम श्लोक साध के बचन सुनत कमावत होत उदार सफल जीवन सफलता का संग जय जय शब्द अनाहद वाजे।

0: भय सबरेन प्रसन्न भय गुरुदेव आल जंजाल विकार ते रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभ धारी प्रभ की औसत करहो संत मीत सुखमनी सहज गोविंद गोविंद गुण नाम सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए सब ते ऊच पाए स्थान हर धन खाट चले जन सोए हेम शांत रिद नव निद विद्या तप योग प्रभ ध्यान चार पदार्थ कमल प्रकाश।

इस पंक्ति विच अरजोई है, बेनती है, सारा शब्द बेनती है, अरदास है। कीती हुई साधना, कीता होया जप तप, वही सफल है जो मनुख नू अरदास तक ले जाए, बेनती तक ले जाए। कुछ धर्म ते ऐसे ने, जैसे ईसाई, भी चर्च क्यों जा रहे हो? प्रेयर करने जा रहे हैं, अरदास करने जा रहे हैं, सिर्फ अरदास करने जा रहे हैं। साढ़े च ऐसा नहीं, कीर्तन सुनने जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, गुरु दे दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, सत्संगियां दे दर्शन करने जा रहे हैं, सेवा करने नहीं जा रहे हैं, पुन करने नहीं जा रहे हैं। ये सब कुछ कीता होया, पुन सुने होया, कीर्तन सुनी हुई कथा, इसका फल की है अंदरों अरदास दा निकलना। वो अरदास फिर व्यर्थ नहीं जाती, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास।

वक्त निकलते है असर रखते है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखते है। दिल दी गहराई चो जड़ी अरदास निकली है खुदा तक पहुंचेगी। इसे नु गुरबाणी कहती है, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। सारे शब्द विच एक अरदास है, यक अर्ज असी अरदास कहने हैं। परशियन विच कहने ने अर्जोई करने, अर्ज करने, अर्ज करने, अर्जोई है। संस्कृत विच हिंदी च कहने ने प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। फारसी च कहने ने अर्ज करनी है, अर्जोई करनी है। गुरु नानक ने एक शब्द नो जन्म देता है, अरदास करनी है। ते अरदास दे जो मैं अर्थ समझे ने ते पढ़े ने, अर्जे दास्त हाथ जोड़ के अर्जोई करनी, दस्त बस्ता हथां नू जोड़ के अर्जोई करने, बेनती करने, प्रार्थना करने। सतगुरु कहंदे ने यक अर्ज इक मेरी अर्जोई, इक मेरी प्रार्थना, इक मेरी अरदास। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, गोश कन्ना नू कहंदे ने। ऐ करतार जे तू कन ला के सुने, मनुख जिथे आउंदा है उत्थे ही उसके कन आउंदे ने। घर विच बैठीए मां ते सानू कुछ सुनाना चाहे नहीं सुन सकते, क्योंकि असी जिथे बैठे हैं कन उत्थे ही ने। जिथों सानू सुनाया जा रहा उत्थे साडे कन कोई नहीं। मनुख जिथे आउंदा है उसदियां इंद्रियां उत्थे ही आउंदियां, उसदी जबान उत्थे ही आउंदी है, उसदियां अखां उत्थे ही आउंदियां। जिथे है उत्थे ते वेख सकदा है, जिथे नहीं है नहीं वेख सकता, जिथे है सुन सकता है, जिथे नहीं है नहीं सुन सकता। मनुख जिथे है उदे ज्ञान ते जद व्यापक है ते उदा सुनना भी व्यापक है। किसे थां भी अर्जोई कीती जा सकती है, किसे थां। परमात्मा व्यापक है, उदा वेखना भी व्यापक है। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हे प्रभु तू कन कर भाव सुन, हे करतार हे सृष्टि दे रचनहारे। एक अरजोई एक बेनती है, फिर अगलिया पंक्तियां जिस दे अगों बेनती कर रहे ने उसकी महिमा बयान कर देना। हां जी, परशियन विच अरबी विच सच नू हक कहंदे ने, हक। जैसे भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। ऐ कलगीधर तुसी ते हक हो, भाव सच हो, हकीकत सच्चाई, हक सच। परशियन विच अरबी विच सच लई जेड़ा शब्द है वो है हक। सतगुरु कहंदे ने हक्का ऐ सच्चे, हक्का ऐ सच्चे, हक्का कबीर। कबीर कहंदे ने बुजुर्ग नू, वड्डे नू, पुराने नू, पुराणी चीज नू कबीर कह देंदे ने। बुजुर्ग बुढ़े मनुख नू भी कबीर कह देंदे ने, संत फकीर नू भी कबीर कह देंदे ने, और परमात्मा नू भी कबीर कहंदे ने। वड्डा है, बुजुर्ग है, कदीमी है। एक कबीर लफ्ज फारसी का भी है और अरबी का भी है। अरबी च भी कबीर कहंदे ने, परशियन च भी कबीर कहंदे ने वड्डे नू। हे हक्का हे सच दे स्वरूप, हे सच्चे हे सब तो वड्डे, हक्का कबीर करीम तो बख्शिंदे तो। तेरे स्वभाव विच दया ही दया है, तेरे स्वभाव विच रहमत ही रहमत है, बख्शिश ही बख्शिश है। हक्का कबीर करीम तो बेऐद परवरदिगार, ऐ पालन हारे तू निर्विकार है, तेरे च कोई ऐब नहीं, तू निर्विकार है, निर्मल है, अति निर्मल है, अति निर्मल है, निर्विकार है, और सृष्टि का करणहार है। तू हक है, तू कबीर है। इस तरह मेरे पातशाह उस प्रभु की अरदास जो है मैं

0: मां गायन कर रहे हैं। हाँ जी,
1: दुनिया मुकम्मे कमी तहकीक दिल कमी,
0: हे प्रभु मैं ते अपने दिल नो समझाना, ये जगत फानी है नासवंत है, तू हक्का है, जगत ते झूठ है छाया है, तू कबीर है ये सब कुछ ते तुच्छ है बेमैनी है। दुनिया मुकामे फाने, ये जो टिके होया जगत दिसदा पे है ते मिट जाएगा, इते फानी है नासवंत है। ऐ मेरे दिल तू ऐसा जान, हे प्रभु हे करीम हे हक्का, मैं अपने दिल नो ऐसा समझा रहा ऐसा कह रहा, सब कुछ नासमंत है। किसी वक्त खुलासा करांगा, धर्म दा प्रभु दा सारा ज्ञान मौत दे ज्ञान तो आरंभ होंदा है। लोभ वासना अहंकार सारा जीवन दी लालसा तो शुरू होंदा है। जितनी जीवन दी लालसा उतना अहंकारी, जितनी जीवन दी लालसा उतना लोभी, जितनी जीवन दी लालसा उतना वासना दे ग्रसिया होया, जितना मौत दा ज्ञान उतना बैरागी, जितना मौत दा ज्ञान उतना सतवादी, जितना मौत दा ज्ञान उतना आत्मदर्शी। धर्म दा ज्ञान शुरू होंदा है मौत दे ज्ञान तो। तो सतगुरु कहिंदे ने मैं दिल नूं समझा रहा, सब नासवंत है, सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐ मेरे दिल ये सच करके जान, ये मैं चंगी तरह तहकीकात करके वेख लिया, छान बीन करके देख लिया, सब कुछ नासवंत है, सब कुछ नासवंत है। ऐ मेरे दिल सच्चा जान, केवल उसनों वड्डा जान, केवल उस परिपूर्ण परमात्मा। हाँ जी,

चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले न्यू कवल जन जानिया खिड़ मूह बखाले मोर बाबी ये बोल दे वेख बदल काले नार पतार प्यार है मां पुत संभाले पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है पीर मरीदा पिर खड़ी ओ निब है नाले के मरीद दी ते पीर दी जड़ी प्रीत है ओ तोड़ निबण वाली ओ रस्ते विच टुटन वाली नहीं। आप तवज्जो देना, गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदों असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्हां ने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नू मुखातब करके प्यारे नू प्यार करन दे कुछ जुगतां सानू दसी। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है, उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना हां कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने, रहाओ दे बचन ने, मन रे क्यों छूटै बिन प्यार, हे मेरे मना कि परमात्मा नू प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा है, कि तू बंधना तो मुक्त हो सकना परमात्मा नू प्रेम करन तो बिना। मन रे क्यों छूटै बिन प्यार, गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारिया थावां ते रविया है ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नू फिर समझिए, मन रे क्यों छूटै बिन प्यार, प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नू कदी तू खुश नहीं कर सकदा। गुरु तो बिना तेनू प्रेम करन दी जुगत नहीं आउंदी। वैसे तो जे इंसान नू समझ पै जाए कि प्रेम प्रीत प्यार ने ये जितने भी शब्द असी वरतने आ, जे इंसान दे शरीर अंदर तन अंदर परमात्मा दी प्रीत नहीं प्यार नहीं ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने प्रा प्यार तो प्रीत तो बिना जिहड़े मनुखां दे तन ने कहिंदे ने मानो उह तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुरदे सड़ के किते मिट्टी दा ढेर हो जा। उह तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्यार है, मरे कोई शरीर विच कोई हरकत नहीं ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं सच जाणियो ओ खाए भी पीए भी बोले भी पर गुरु दी नजर विच एक ओ जिंदा लाश है, ओ मुर्दा है जे उस अंदर प्रीत नहीं तां प्यार तो बिना छुट नहीं सकदा। हजूर दे बचन सी पढ़ने हैं, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, ये सारे गुण होने दे बावजूद भी मृतक कई है नानका जे प्रीत नहीं। भगवंत बाबा नानक जी कह रहे ने मन रे क्यों छूटै बिन प्यार, मृतक कई है नानका जे प्रीत नहीं। भगवंत जे उस परमात्मा ली प्यार नहीं ते सच जानी ओ शरीर मुर्दे दे समान है, उस शरीर दा कोई अर्थ नहीं। ओ मुर्दे नू जितना मर्जी कोई शिंगारी जाए ते उस दा अर्थ की है, कुछ भी नहीं। हजूर ने कहा प्रीत तो बिना, बाबा फरीद साहब दे बचन सी पढ़ने, उन्होंने जोबन दी गल कीती। हुण जवानी अपने आप विच परमात्मा दी एक बड़ी वड्डी दात है ते जे किसे बंदे दे कोल जोबन भी है पर जोबन होण दे बावजूद उस दे अंदर प्यारे दी प्रीत नहीं ते मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा फरीद साहब कहिंदे ने प्रीत तो बिना मनुख दा तन शमशान भूमि है, प्रीत तो बिना ता जवानी सड़ के राख हो जाए उदा करना की है। बाबा जी ने अमृत बचन कह जोबन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए, कहिंदे ने जोबन जानदा वक्त दे जानदा समय दा जानदा सानू कोई डर नहीं। डर तां उदो है जदों वक्त समा जा जोबन जा जीवन परमात्मा दे प्रेम तो बिना चला जाए, सिमरन तो बिना चला जाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनिया गजलां विच पहला शेर ही ये क्या है, पहली गजल दा कहन लगे खवाए बंदगी आ वुर्द दर वजूद मरा, ऐ मिनसान तू वजूद विच तां आया है कि परमात्मा दी इबादत करें परमात्मा दी बंदगी करें, जे परमात्मा दी बंदगी नहीं सी करनी ते फिर इस वजूद विच इस तन विच आउण दा लाभ की। कहन लगे फिर एवें आसमान दे थले अपनी जिंदगी दे दिन प्या कटने, बंदगी करके ही जिंदगी है जे बंदगी

जो तुद पावै साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर

तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कै सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला।

नानक देखो आपो जान अगे गया न सो है पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक बात सैंस अठारह कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए तां लिखी है लेख होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अते वाह पवे समुंद न जानिए समुंद सा सुल्तान गिरिया सेती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिफती कह न अंत अंत न करने दे न अंत अंत न

पाए जाए। ए अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप। नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंगे जोत अपार, केत्या गंत नहीं विचार, केते खप टुटे बेकार, केते लैले मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, केतिया दुख भूख सदमार। ए बेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए, जे को खाएक आखन पाए, ओ जाने

के रूप न कथने जाए, ना ओ मरै ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसे के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै

जाप श्रीमुख वाग्पाद सहित स्वी छपे संतो प्रसाद चक्र चैनी हर वर्ण जात हर पात निंजय रूप रंग हर रेख पे को कह सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश संतोष कह जय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जय तिर भवन में सुर नर सुर नेत नेत मंत्र कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अभाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संयोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्ते अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अभेशे नमस्तंग नितामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वध्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्व नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अभेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्वे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्त द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व दंदे नमो सत बंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चात्री चांतो प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अभू है अलेख है अभेक है अनाम है अकाम है अदय है अभय है अजीत है अभीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अभर्ण है अगंज है अभंज है अजूज है अजंज है अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लभ है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया छंद।

माया नंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान बाने नमो मान माने नमो चंद चंद्रे नमो पान बाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ति प्रभुते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र पाने नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोक माता वेखी अवरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे सवरंग परम जुगते नमो नित नारायण कुकुर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो भूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वमुख प्रणासी अनूपे अरूपे सुमस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा भिर्द करदा अधो उर्द अर्दंग अगा उग हरता परंग परम परमेश्वरंग प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारंग अछेती अपेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्त तामंग तेरा जोर चातुरी छंद जलय हैं थलय हैं अभीत हैं अभय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अवेश हैं प्रियंपुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्त्वं निनाथे नमस्त्वं परमाते नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अभंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साय नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्वतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंजंत्रंग नमो सर्वदृसंग नमो सर्वोत्कृष्ट नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचानतो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मात्र मान देव अभेद आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल।

भाग, जात्र तात्र दिशा विशा हुए फैलो अनुराग। नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए, सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानुताए। एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। देव पेव न जानी जय बेद हरक तेव, रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव। तात मात न जात जाकर जन्म मर्म ही, चक्र बकर फिरे चतुर चक मान ही पुरतीन। लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप, आद देव अनाद मूर्त थाप्यो सब जय थाप। परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्व रस्यो सुजंबव गण पंजन हार। कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश, धर्म ताम सो परम रहत अभूत अलख अपेख। अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकुदाय काम। आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत, गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत। अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल। सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपे, सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख। परम वेद पुराण जाके नेत पागत नेत, कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे उचित। मद भार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार, मैं माया पर आसान अभंग उपमा अनंग। अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास।

कालानकान अनुभूत अंग अभावंगत में तो पार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलचे कंस आदिष्टे तर्म सर्वां बरनांडिय अंडंड भांडिय चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे व्यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेशय के आभिज भेषय के आघाज कर्म के आभंज भरम के आभिज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत कर्ण के राजम प्रवाह के धर्म तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा कह के पाक बे अब है के गय बिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाव के सर्वत्र देशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानिय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पाने के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहिब कलाम के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम सलीख मुदामे गरीब उल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आदरूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिका में त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथुल परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंद है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपण चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नर्क नासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमितो अमेक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के
ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਗੇ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਲ ਫਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਲ ਗਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਪਰੰਗ ਪਰੰਗ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇ ਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਸਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਮੀ ਕੁਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੁਰ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਮਿੱਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ

गुणगण मुदाम अर बारक अगंज हर नर प्रभंज अनगण प्रणाम मन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मन मन प्रगास गुणगण प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस्विस अभंड जल थल महंत दिस्विस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड।

अंठन अपार आडीठ तरम अत टीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना संतो प्रसाद करनाले अर काले है कलखंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणीतृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलघायक है विश्वम्भर है करुणालय है निर्मनायक है सर्वपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा है सर्वात्मा आत्म बस है जस के जस है पुजांग पुरा छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संगताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे समस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा समस्तल निवासी अजायब बभूते अजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते। तो प्रसाद सोइए सराव समूह सिदान के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरार दन सुध सुधायक सन समूह अवनिवृति के सारी देश को देख रियो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कुद पौन के गौन कुजात निवारे पारी पजान कपूर बली बर न्याव सीत न जात बिचारे इते पै तो कांपे पुपत अंत को नांगे पाएं बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है राज हजारे पूत पवेख पवान के पुपत कौन गने नी जात बिचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सुसंयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जतार सब सुचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है सुध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जान दले

0: नहात फिरयो लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे बैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पूछा को सी सुनवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुम कावो आप हाथ दे मोय बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिय सब बैरन को आज संगरिय पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर जाओ सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजो करियो रक्षा राख लो।

जो अवतरा काल पाए कर विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जमन काल सब लोग सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिव गुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचान काट काट के पट पट की जाने जब उदकरख करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ देते बदन

ओंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा जा को पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड किछ पेद न जानत महादेव को कह सदा शिव नंकार कर चिंत नहीं पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तोय तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह भी सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव कई पूपा अंडज जे राज से तज कीनी उत्पुज खान बहु रज दीनी कहो फू राजा हर बैठा कहो सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सृष्टि दिखाए चंभव आज जुगा स्वरूप सुजंभव आवरछा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रन काता जे आज तो तब सरनी परे तिन के दुष्ट दुख्त है मरे पुरख जवन पाग परे तिहारे तिन के तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार तिहाय है ताके काल निकट नहीं आए है रच्छा होए ता सब काला दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो।

अंतर आत्मा संभाले आप छड़ सदा रहे परने गुरबिन अवर न जाने कोए। कह नानक सुनो संतो सो सिख सरमुख होए। जे को गुर तेरे मुख होवे दिल सतगुर मुक्त ना पा।

जैसी अगन उदम है तैसी वार माया, माया अगन सभी को जई करता खेल चाया, जानत सपाना ता जमया।

या इंज कह लो सारे मजहब भी उस तो आउंदन जिहदा कोई मजहब नहीं है। ऐ शब्द भी सुन लो महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी दे, नमस्तं अमजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब नहीं। नमस्तं अमजबे, नमस्तस्त अजबे, हे अजब स्वरूप परमात्मा तैनू नमस्कार, तेरा कोई मजहब नहीं। ना तू हिंदू है, ना तू मुस्लिम है, ना तू सिख है, ना तू ईसाई है, ना तू यहूदी है, ना तू पारसी है, ना तू जैनी है, ना तू बौद्धी है, तेरा कोई मजहब नहीं, तेरी कोई जात पात नहीं, तेरे कोई तात मात नहीं, तेरा कोई मजहब नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बड़ी हिम्मत से बड़ी जुरत दिखा रहे ने थे, नमस्तं अमजबे, नमस्कार है प्रभु तेनू, तू अमजहब है, तेरा कोई मजहब नहीं। मजहब एक रास्ता है, मजहब का अगर कोई माण भी कर रहा है तो रस्ते दे चे, ठीक है रस्ते चे, घर तक पहुंचने वास्ते रास्ता चाहिए है। घर पहुंच गया कोई मजहब नहीं, क्योंकि जिसका घर है, जिसके घर दे चे जाना है, उसका कोई मजहब नहीं। सारिया नदियां सागर की तरफ जांदियां ने, हर नदी का किसी मुल्क नाल भी संबंध है, कुछ धार्मिक क्रियावां नाल भी संबंध है, इलाके नाल भी संबंध है, ते हर नदी का अपना नाम भी है। ये गंगा है, जमुना है, गोदावरी है, नर्मदा है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चनाब है, जेलम है, ब्रह्मपुत्र है, इन्हां दा इलाकियां नाल और मुल्क नाल संबंध है। असी कह सकते हैं दरिया हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान दे च वगदा है। फिर इन्हां दे नाम ने, फिर दजला है, फरात है, ये इराक दे विच वगदे ने, तो मुल्क ते इलाके दा संबंध उन्हां नाल जुड़ंदा है, भी ये दरिया इराकी ने, इराक दे ने, उत्थे वगदे ने, दजला फरात उत्थे वगदा। नील नदी मिस्र दे च वगदी है, तो असीं कह सकदे हां इह ते मिस्री है, इजिप्शन है, मिस्र दे च वगदी है, उस इलाके नाल इसका संबंध है, इसका नाम है। थेम दरिया इंग्लैंड दे च वगदा है, असी कह सकते हैं इसका इंग्लैंड नाल संबंध है, इसका नाम थेम है। पर जब सारे सागर दे चलीन हो जाते हैं, सारिया का नाम एको ही हो जाता है, कि सागर, ना गंगा ना जमुना, ना सतलुज ना ब्यास, ना रावी ना चनाब, ना गोदावरी ना नर्मदा, ना दजला ना फिरात, ना नील ना थेम। जब भी कोई प्रभु दे चलीन हो जाता है, गुस्ताखी माफ मैनू कहण देना, ना वो हिंदू है, ना सिख है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, ना जैनी है, ना बौद्धी है, ना यहूदी है, ना पारसी है। जितने चिर तक पारसी है, यहूदी है, हिंदू है, इतने चिर तक नदी तो है, सागर नहीं है, नहीं है, समुंदर नहीं है। मेरे ख्याल इतने ही शब्द बर्दाश्त कर सकोगे, इतना ही कहना मैं। कई बड़े तार्किक होंगे, कट्टर बड़े होंगे, और कमाल की गल, अकल तो बिना अकल का दावा, अकल नूं ते छिके ते टंगे होए अकलमंद होने का दावा धार्मिक जगत दे इस तरह चलता है। फिर पता की है, किसी एक कद नूं अकल आ जाए तो इस तरह की गल कवे, फिर कटो उसके बंदबंद, बिठाओ उसनों तत्ती तवी, कटो उसकी गर्दन चांदनी चौंक दे, ईसा सोली ते लटकदा पिया। मुहम्मद साहब दे बदर की लड़ाई दे अगले दो दन तोड़ दिते गए। सुकरात नूं जहर का प्याला दे के मार दिता गया। हुण पुछिए, एक नूं तुसी सूली ते टंगिया, एक नूं जहर दे के मार रहे, एक दे दन तुसी तोड़ दिते, एक नूं तत्ती तवी ते बिठाया, एक नूं चांदनी चौंक दे गर्दन कट दिती है। फिर उन्हां दे फरजंद, उन्हां दे बच्चियां नूं, पोतरियां नूं तुसी दीवार दे चिणदे पए, किसी दे बंद बंद कट रहे हो, किसी नूं उबल दी देग दे च बिठा रहे हो। पहले दसो इन्हां ने चोरी कीती है, यारी कीती है, बलात्कार कीता, किधरे कतल कीता है, एक भी जुर्म नहीं, इन्हां दा एक कसूर है कि ये बेकसूर। कसूर वारां दे कट दे च बेकसूर होना भी एक कसूर है, गुनाहगारां दे कठ दे च बेगुनाह होना भी गुनाह है।

कोई बणत बना के एक किचल दूजा सत पाल घर वेच बला के एक किचल दूजा सत पाल घर वेच बला के

0: प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान
1: प्रभ को सिमरे से बेहमो ताजे
0: प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे
1: प्रभ को सिमरे से सुखवासी
0: प्रभ को सिमरे सदा अवनासी
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला
0: नानक जन की मंगेर वाला
1: प्रभ को सिमरे से पारि उपकारी
2: प्रभ को सिमरे तिन सत बरहारी
1: प्रभ को सिमरे
3: तिन शुरू करो
1: गौरी सुखमनी महला पांचवा श्लोक एक ओंकार।

0: सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया
1: हर का नाम जपत होए सुखिया
0: लाख करोरी बंधन परे
1: हर का नाम जपत निष्करे
0: अनेक माया रंग तेख न बजावे
1: हर का नाम जपत करावे
0: मार गे जात अकेला
1: तेहर नाम संग होत सहेला
0: ऐसा नाम मन सदा त्याइए
1: नानक गुरमुख परमगत पाइए
0: टूटत नाही कोट लख बाही
1: नाम जपत ते पार प्राही
0: अनक विघन जाए आए संगारे
1: हर का नाम तत्काल हरे।

0: तीर्थ विवेके
1: हर का नाम जन को मुक्त जगत
0: हर के नाम जन को तीर्थ भूत
1: हर का नाम जन का रूप रंग
0: हर नाम जगत का परे न भंग
1: हर का नाम जन की वडियाई
0: हर के नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोग जोग
0: हर नाम जगत

0: गुनगुन कशु न बुझे
1: नक्ष ले हो तो नानक सिय
0: हे प्रसाद तर ऊपर सुख बस है
1: सत प्रहार भी बंदा संग हसे
0: हे प्रसाद पी वह सीत जला
1: सुखदाई पवन पाल के मुला
0: हे प्रसाद भोग है सब रसा
1: सगले सामग्री संग साथ बसा
0: तीने हस्त पाव कर नेत्र रसना
1: इसे त्याग अब संग रचना
0: ऐसे दुख मूड अंध व्यापे
1: नानक काट ले रोग का
0: आद अंत जो रख

0: ना करे
1: आवत जावत जन्मे मरे
0: जिसके अंतर बसे निरंकार
1: जिसकी सीत तरे संसार
0: जो तुम पाने तिन प्रभ जाता
1: नान कौन जन जन पराता
0: करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने
1: अपना किया आपे माने
0: आपे आप करतन बेरा
1: किसे दूज नावत किसे बजावत नेरा
0: पाव से आनप सगल ते रहत
1: सब कुछ जाने आत्म की
0: जिस पावे तिस

0: जय प्रसार शक्ति ही अमृत खाहे
1: माहे।
0: जय प्रसार सुगंधित तन लाभ है जय प्रसाद बस है सुख मंदिर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना जय प्रसाद रंग रस भोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हडाव है जय प्रसाद सुख सेज सोई जय जय प्रसाद तुझ सब को माने जय प्रसाद तेरो रहता धर्म
1: केवल
0: प्रभ जी जपत दर्ग है मान पाव है जय प्रसाद आरोग कंचन देही
1: जय
0: प्रसाद तेरा ओला रहत
1: मान सुख पावे हर हर जस कहत
0: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके जय प्रसाद तुझ को ना पहुँचे
1: मन साथ साथ सिमरो प्रभु जे
0: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह
1: नानक ताकी भगत रहे
0: जय प्रसाद अभूखण बहरी जय
1: मानस सिमरत को आलस की जय
0: जय प्रसाद असभ हस्त असवारी
1: मानस प्रभु को कबहु ना सारी
0: जय प्रसाद बाग मिलख तना
1: राख प्रोय प्रभु अपने मना
0: जिन तेरी मन बनत बनाई
1: उठ बैठ से
0: सहे त्याए जो एक अलख है
1: नानक तेरी रखे
0: जय प्रसाद करहे पुन बहुदान
1: आठ पैर कर जिसा जान
0: जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी
1: प्रभु को साथ साथ तारी
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप
1: प्रभु सिमर सदा अनुप
0: जय प्रसाद तेरी नीकी जात
1: प्रभु सिमर सदा रात
0: जय प्रसाद तेरी पत रहे
1: प्रसाद नानक जस रहे
0: जय प्रसाद सुनहे कर्ण नाद
1: जय प्रसाद पेखे बसमाद
0: जय प्रसाद बोलहे अमृत रसना
1: जय प्रसाद सुख सहजे बसना
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है
1: जय प्रसाद संपूर्ण पड़े
0: जय प्रसाद परम गत पाव है
1: जय प्रसाद सुख सहज समावे
0: ऐसा प्रभु त्याग अबर कत लाग हो
1: प्रसाद नानक मन जागो
0: जय प्रसाद तू प्रकट संसार
1: प्रभु को मूल ना मनो विसार
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप
1: रे मन मूड तू ताको जाप
0: जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे
1: इसे जान मन सदा जुरे
0: जय प्रसाद तू पाव है साच
1: रे मन मेरे तू तां सुहाच
0: जय प्रसाद सब की गत होए
1: नानक जाप जपे जप सोए
0: आप जपाए जपै सो नाओ
1: आप गवाए सो हर गुण गाओ
0: प्रभ कृपा ते होए प्रगास
1: प्रभु दया ते हमर निवास
0: सो प्रसन्न बसे मन सोए
1: प्रभु

0: सार के संग मुख उज्जल होता
1: सार संग मन सलीख होता
0: सार के संग मिटे अभिमान
1: सार के संग प्रगटे सो ज्ञान
0: सार के संग बुझे प्रभ नेरा
1: सार संग सब होत वीरा
0: सार के संग पाए नाम रतन
1: सार के संग ऊपर जतन
0: सार की महिमा बरने कान प्राणी
1: नानक सार की शोभा ब्रह्मा समानी
0: सार के संग अगोचर मिले
1: सार के संग सदा पर मिले
0: सार के संग आवे बस पंचा
1: सार संग अमृत रस पंचा
0: सार संग हो सबकी रेना
1: सार के संग मनोहर रेना
0: सार के संग न कथु तावे
1: सार संग अस्तित्व मन पावे
0: सार के संग माया ते पिन
1: सार संग नानक प्राप्त हो पर संग
0: सार संग दस मन समीत
1: साधु के संग महाप्रणीत
0: सार संग के स्या नहीं बैर
1: सार के संग न बिगड़ा पैर
0: सार के संग न ही को मंदा
1: सार संग जाने परमानंदा
0: सार के संग न ही हो ताप
1: सार के संग तजे सब आप
0: आपे जाने साध बढ़ाई
1: नानक साध प्रभु बन आई
0: सार के संग न कब हूं तावे
1: सार के संग सदा सुख पावे
0: सार संग बस्त अगोचर लहे
1: साधु के संग अजर सहे
0: सार के संग बसे थान ऊंचे
1: साधु के संग मैं पहुंचे
0: सार के संग दड़े सब धर्म
1: सार के संग केवल पार ब्रह्म
0: सार के संग पाए नाम निदान
1: नानक साधु के करवान
2: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
0: साधु के संग पाप पलायन
1: साध संग अमृत गुण गायन
0: साध के संग सर्व थान गम
1: नानक साध के संग सफल जन्म
0: साध के संग नही कश काल
1: दर्शन भेट तोत निहाल
0: साध के संग कलुखत हरे
1: साध के संग नरक पर हरे
0: साध के संग इहा उहा सोहेला
1: साध संग बिछड़त हर मिला
0: जो इच्छे सोई फल पावे
1: साध के संग न
0: पार ब्रह्म साध रद बसे
1: नानक उतरे साध सुन रसे
0: साध के संग सुनो हर नाव
1: साध संग हरे गुण गाओ
0: साध के संग न मनते बिसरे
1: साध संग सर पर निस्तरे
0: साध के संग लगे प्रभ मीठा
1: साधु के संग कटक डीठा
0: साध संग पै आज्ञाकारी
1: साध संग कटई हमारी
0: साध के संग मिटे सब रोग
1: नानक साध मिटे संयोग
0: साध की महिमा वेदना जाने
1: जेता सुने तेता बखियाने
0: साध की उपमा तह गुण ते दूर
1: साध की उपमा

0: लागे तड़प माया।
1: ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक,
0: बस्ता को खोदे को चंदन लेक।
1: ब्रह्म ज्ञानी का एह गनाओ,
0: नानक ज्यों पाव का सहज स्वभाव।
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला,
0: जैसे मैल न लागे जला।
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए परगास,
0: जैसे तारु पर आकाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी के भीतर सतर समान,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान।
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा,
0: मन प्रेम है सबते नीचा।
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पै,
0: नानक करे।
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना,
0: ब्रह्म ज्ञानी जीना।
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैया,
0: ब्रह्म ज्ञानी से कुछ बुरा ना पाया।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी।
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता,
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योगा।
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान,
0: ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।
1: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस,
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा,
0: ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार माहा।
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा,
0: ब्रह्म ज्ञानी रे साव संबंधा।
1: ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला,
0: ब्रह्म ज्ञानी सो भला।
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उदार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सर्व संसार।

0: पांच दुख ते रहत
1: नानक होट मने को ऐसा परस
0: नो सो जिस ऊपर सो परसान
1: जिसन की माया ते होए
0: कर्म कारत हो वैने कर्म
1: इस बैसलों का निर्मल कर्म
0: काहू फल की इच्छा नहीं बाचे
1: केवल भक्त की तन संग राचे
0: संतान अंतर सिमरन गोपाल
1: सब ऊपर हो बच कर पाल
0: दृढ़ अवरह नाम जपावे
1: नानक हो वैसो परम गत पावे
0: भक्ति भगवंत भक्त का रंग
1: सगल के आगे दुष्ट का संग
0: अंत बिन सगला पर

0: अरब रूका ओ खद नाम
1: कल्याण रूप मंगल गुण नाम
0: जुगत के तै न पाइय धर्म
1: नानक तस मिले जिस विद्या।

0: परवाना।
1: अपनी दास को आप कृपा करे,
0: इस दास को सब सोजी पड़े,
1: अगले संगत में उदास,
0: ऐसी जोत नानक राम दास,
1: की आज्ञा आत्म हतावे,
0: जीवन मुक्त हो पावे,
1: ऐसा हर खत ऐसा सोग,
0: सदानंद नहीं वियोग,
1: ऐसा सुवर्ण तैसी अस माटी,
0: ऐसा घर तैसी बेखाटी,
1: ऐसा मान तैसा अवमान,
0: ऐसा रंग तैसा रंगान,
1: बरताए साई जगत,
0: नानक पुरख कहिए जीवन मुक्त।

0: कई कोट होए पुजारी कई कोट पे तीर्थवासी कई कोट वेद के स्रोते
1: कई कोट पीसर होते
0: कई कोट आत्म ध्यान तार है
1: कई कोट अवतार विचारे
0: कई कोट नवतन नाम त्याव है
1: नानक करते का अंतरम पावे
0: कई कोट पे अपमानी
1: कई कोट अंदर ज्ञानी
0: कई कोट कृपण कठोर
1: कई कोट अवतार
0: कई कोट पर दर्प को हिरे
1: कई कोट पर दुख ना करे।

0: कई कोट पवन पानी वै संतर
1: कई कोट देश को मंडल
0: कई कोट ससियर सूर नक्षत्र
1: कई कोट देव राम इंद्र से छतर
0: सगल समग्री अपने सूत धारै
1: नानक।

0: हम के दास
1: तेनो वचना तुम बरदास
0: कई कोट तत् के भेते
1: सदा निहारे को नेत्रे
0: कई कोट नाम रस पीवे
1: अमर भय।

0: ब्रह्म विचार
1: ज्ञान के आप मिलावण हार
0: कबहु नृत्य करे बहुपात
1: कबहु सोए रहे दिन रात
0: कबहु महाक्रोध विकराल
1: कबहु सर्व की होकर।

0: गुर प्रसाद नानक सच कहे।
1: कबहू होए पंडित करे बख्यान,
0: कबहू मोर तारी रावे ध्यान।
1: कबहू तत् तीर्थ स्नान,
0: कबहू सिर्फ साधक मुख ज्ञान।
1: कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया,
0: मानक जोर पर मे पर मिया।
1: नाना रूप जो स्वागी दिखावे,
0: जो प्रभावे तिवे नचावे।
1: जो तिस पावे सोई होए,
0: नानक दूजा अवर ना कोए।
1: कबहू साध संगत हो पावे,
0: उस स्थान ते बहुर ना आवे।
1: अंतर होए ज्ञान पर गास,
0: उस स्थान का नहीं विनाश।
1: मन तन नाम रते एक रंग,
0: सदा बसे पार भ्रम के संग।
1: जो जल मह जल आए खटाना,
0: जो ज्योति संग ज्योत समा।

जब लग जाने मुझ ते कश होए जब यह जाने मैं किश करता जब तारे को बैरी मीत जब लग मोह मगन संग माए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे सहस खटे लख कोठ तावे अनक भोग बिखिया के करे बिना संतोख नहीं को राजे नाम रंग सर्व सुख होए कर्ण करावण आपे आप कर्ण करावण करने हार जैसी दृष्ट करे तैसा होए जो किश किन्नो सो अपने

0: मान लेहो मन मोल
1: राम नाम है देने तोर
0: देखे बसंत संग चाल
1: अवत्याग विद्या जंजाल
0: तन कहे सब कोई
1: मुक्त उज्जल हटर के सोए
0: व्यापार बिरला व्यापार
1: नानक ताके सत बलिहारे।

0: नानके थारे सिमरत वेद पुराण,
1: नानके थारे सुनन ज्ञान ध्यान,
0: नानके थारे आगास पाताल,
1: नानके थारे सगल आहार,
0: नानके थारे पुरिया सब पवन,
1: नानके संग तेरे सुन सरवन,
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए,
1: नानक चौथे पद में सो जन गत पाए,
0: रूप सत जाका सत स्थान,
1: पुरख सत के बल प्रधान,
0: दूत सत सत जाकी वाणी,
1: सत
0: कर्म जाकी रचना सत,
1: मूल सत सत पत,
0: सत करनी निर्मल निर्मली,
1: जिसे बुझाए किसे सब पगली,
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई,
1: विश्वास सत नानक बनते पाई,
0: सत वचन साधु उपदेश,
1: सत लन जाके दे परेश,
0: सत नृत्य बुझे जे कोए,
1: नाम जपता की अर्थ होए,
0: आप सत किया सब सत,
1: आपे जाने अपनी नित गत,
0: उसकी सिस्तो करने हार,
1: अवन भूज कर्त विचार,
0: करते की मित न जाने किया,
1: नानक ज्योतिष पावे सोई बतिया,
0: दुश्मन विषम पै विस्माद,
1: जिन बुझिया तिसे आया स्वाद,
0: सबके रंग रात जन रहे,
1: गुर के वचन पदार्थ रहे,
0: कोई दाते दुख काटन हार,
1: जाके संग तरे संसार,
0: जन का सेवक सो बढ़

0: करनारे
1: बारंबार बार प्रभ जपिए
0: अमृत माता कृपिए
1: नाम रतन जन गुरमुख पाया नाम तन नाम रूप रंग
0: नाम का संग
1: नाम रस जो जन तिपताने
0: नाम समाने
1: उठत बैठत सोवत नाम

0: अंत पाए तरिये संसार सर्व कल्याण सुख नित नाम
1: जात पाए विश्राम
0: सकल दुख का होवत नाश
1: नानक नाम जपो मन नाश
0: उपजी प्रीत प्रेम रचाओ।

0: कै हर अगम अपार
1: तब नरकुसुर को कौन अवतार
0: तब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए
1: तब सब तो कहो के ठाए
0: तब आप है आप अपनी ज्योत तरह
1: भवन निडर कौन का जड़े
0: अपने चलते आप कारने हार
1: नानक ठाकुर अगम अपार
0: अविनाशी सुख अपने आसन
1: जन्म मरण को कहा विनाशन
0: जब पूर्ण करता प्रभु सोए
1: तब जम की त्रास को कैसे होए
0: जब व्यक्त गोचर प्रवेका
1: जब
0: नाथ निरंजन व गोचर गादे अपने आप आपी चार
1: जा
0: निर्मल पुरख पुरख पत होता
1: यह
0: निरंजन निरंकार निर्वाण
1: कौन को मान कौन अभिमान
0: यह स्वरूप केवल जगदीश ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे रावण कारण हार अपनी शोभा आपन संग बनाई
1: यह
0: सर्व कला आप हर परवीन अपनी आप पर तारा।

0: मैं है देख
1: वाणी
0: प्रभु की सबको।
2: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
3: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
0: साध परम का नास
1: नानक तन में हो विश्वास
0: संत जना का पेखन सब ब्रह्म।

0: सास सास सिमरह गोविंद
1: मान्यांतर की उतरे चंद्र
0: सास नेत त्याग हो तरंग
1: संत जना की तोड़ मांग
0: आप छोड़ बेनती करहो
1: साध संग अगर सागर भरो
0: हर तन के भर लेहो भंडार
1: नानक गौर पूरे नमस्कार
0: केम कुशल सहज आनंद
1: साध संग भगत परमानंद
0: नरक निवार उद्धारो जियो चित चित बहो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दामोदर दीन दयाल
1: दुख पंजन पूरन के पाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का ये आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमरीक लारे अदर
0: सुनत कमावत होत उदार
1: आप तेरो के सार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके हमरा का रंग
0: जय जय शब्द अनाहद वाजे प्रगटे गोपाल महात के माथे
1: नानक उतरे तन के साथे
0: सरन जोग सुन सरनी आए
1: मिट
0: गए बैर पे सब रेन प्रसन्न पे गुरुदेव आल जंजाल विकार ते रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभ तारी
1: नानक नहीं के हमारी
0: प्रभ की औसत करहो संत मीत सुखमनी सहज गोविंद गोविंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सो तन धाम
0: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए
1: प्रदान पुरख प्रगट सब होए
0: सब ते ऊच पाए स्थान
1: ना होवे आन जान
0: हर धन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: हेम सांत रिद्ध नव निद
1: बुद्ध ज्ञान सर्व का सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रगास

जैसे दर्पण माहे बदन परवानी बस कटा कट लीप न छीपे बंधन मुक्ता जात न दिस पानी माहे देख मुख जैसा नामे को स्वामी बीठल ऐसा।

दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जाय होगा शिव दुख समि नूर अर सोह कुर सोह चटिया।

0: ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੂਪ ਮੀਨੰਗ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ
1: ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੈ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੈ, ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਤਾਇਆ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮੇ ਨੇ, ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇਮੈਨ ਹੈ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਬੌਧ ਮੱਠ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਸਨਾਤਨ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਚਰਚ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਸਿਨਾਗੋਗ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰ, ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੰਦਨ ਤਰਨਾ ਬਨ ਬਨ ਸਾਧਨਾ ਪੁਰ ਪੁਰ ਮਾਂ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਜੰਗਲ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੇਸਰ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਕੇਸਰ ਸਪੇਨ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਮੁਲਕ ਹੋਰ, ਬਾਕੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜਾ ਬੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਬੋਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੀਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੰਪੋਸ਼, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨੇ ਸੰਤ, ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੇਸਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਚੰਦਨ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨੇ ਹੀਰੇ, ਪਰ ਹਰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨੇ ਸੰਤ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਧਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲੋਸਫਰ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚੰਦਨ ਤਰਨਾ ਬਨ ਬਨ ਸਾਧਨਾ ਪੁਰ ਪੁਰ ਮਾਏ, ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨਾ ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਔਖਾ। एक छोटी का इंजीनियर डॉक्टर बन जाना साइंटिस्ट बन जाना इतनी वड्डी गल नहीं, इतनी अकल दी गल भी नहीं जितनी अकल दी गल चाहिए है धर्म नूं समझण वास्ते। बड़ी मशक्कत है मानसिक, बड़ी मेहनत है मानसिक, जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत गाल, बड़ी घालना है बड़ी मेहनत है। तो खैर धार्मिक इकट्ठ होण गए, कोई धर्म की समझ रखता होवे ऐसा सिलसिला बहुत घट आउंदा है, बहुत घट आउंदा है। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा धार्मिक जगत विच बस दो दी समझ चाहिए है, प्रभु दी ते गुरु दी। ते जे प्रभु दी समझ नहीं ते गुरु दी समझ भी नहीं फिर इकट्ठ होवे एक लख बंदियां दा किस तरह आखोगे धार्मिक इकट्ठ है। हुण मैनूं तुहाडे बर्दाश्त दे मादे दा ते पता नहीं पर कंठ तक गल आ गई है, मैं कहण लगा बहुत सारी मस्जिदां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं होंदा, बहुत सारे मंदरां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं होंदा, बहुत सारे गुरुद्वारियां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं होंदा। हुण होर भी मैनूं कहण देना बहुत सारे धार्मिक कर्म नहीं होंदे, नहीं होंदे। बहुत सारिया धार्मिक क्रियावां दिखाई दे रही ने, धार्मिक क्रिया है धार्मिक नहीं है। कारण जब प्रभु की समझ नहीं ते गुरु की समझ नहीं तो फिर किस तरह धार्मिक कर्म होगा। प्रभु नूं कहिंदे ने ओ घर है, घर है। गुरु नूं कहिंदे ने ओ दर है, ते गुरबाणी कहिंदी है दर घर की सोजी ना। बड़ी कीमती पंक्ति है, ना दर दा पता ना घर दा पता। सतगुर ए सवालिया फिकरा भी उच्चारण करदे ने, सो दर कहा सो घर कहा जित बै सर्व संभाले। जिंदगी एवें कर्म कांड दे चना लंघ जाए, कुछ उद्यम करो उपराले करो। असी अरदास दे चे शब्द जोड़े हुए ने, सही संत गुरमुख प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते रहा, तेरे जिन्ना मिलिया तेरी याद चल पे, जिन्ना दे संदणिया मेरी दुरमत वंजे, मित्र असाजड़े से। मुख्तसर में अर्ज करा धार्मिक मंदिर बना लेना सेवा है, सेवा नाल बनते ने मंदिर गुरुद्वारे मस्जिदां। दान नाल, दान सेवा है, मेहनत नाल धन कमाया धन दान दे दिता सेवा है। दान सिमरन नहीं है और दान नाल कोई मन निर्मल नहीं होंदा, अगर सिमरन ना होवे तो दानी महाहंकारी होंदा है, दानी महा बेईमान होंदा, गुस्ताखी माँ है। बहुत वड्डा दानी पर बहुत वड्डा बेईमान है, बेईमानी करके धन कमाया है दानी बने होया। सती पाप कर सत कमाए, बड़ी कीमती पंक्ति है। सती पता है किसे नूं कहिंदे ने? दानी नूं। सत कमाए, सती पाप कर सत कमाए, दानी पाप करके धन इकट्ठा करता है फिर दान देता है, कहता मैं धार्मिक कर्म किया हद हो गई, जिहड़ा तू कमाया ही पाप नालों दिता होया पुन किस तरह हो गया, किवें हो गया। गुरबाणी बहुत गहराई जाती, इतना ना समझ लेना। मैनू कई मिल पैंदे ने गैनी जी, अज असी चार सुखमनी साहब दे पाठ किए ने, मैं कह तेरे चेहरे के उत्ते एक पंक्ति की झलक भी नहीं मिलती, एक पंक्ति की झलक भी नहीं मिलती, तेरे व्यवहार दे ते एक पंक्ति की झलक भी नहीं मिलती। की होया तू चार सुखमनी साहब दे पाठ कर लै? दान सेवा है। दो दानी लड़ पैंदे ने, दान दे नाल हंकार जांदा नहीं, कई दफा वध जांदा, बड़ा भयंकर वध जांदा। कुछ गल्लां सामने आईयां ने, मैं नहीं कह रहा इस वास्ते संकोच करके वापस पिया करदा। सती पाप कर सत कमाए। बहुत वड्डा दानी है, जरूर बहुत वड्डा बेईमान होवेगा, क्योंकि पापा बाजो होवे नाही मोया साथ ना जाए। बहुत वड्डे पाप ना कीते जान तो इतना धन कट्ठा ही नहीं होंदा। फिर पाप का बोझ लाने वास्ते दान, महाराज कहते ने किस तरह हो सकता है, जिहड़ा कट्ठा कीता है पाप नाल, प्राप्त कीता है पाप नाल, उहदे देण नाल पुन किस तरह हो गया। सती पाप कर सत कमा है। धार्मिक इकट्ठ, धार्मिक सूझ बूझ नु पैदा करन वास्ते गुरु द्वारे होए सोझी पाइस, इत्थे आपां आया सूझ ते समझ लैण वास्ते। किस दी समझ? घर दी समझ, दर दी समझ। दर घर की सोझी ना है, ना घर दा पता ना दर दा पता। हुण होर भी मैं अर्ज करा, घर दे च प्रवेश उसनों मिलदा जिहड़ा पहले दर ते पहुंचे। पहले दर ते पहुंचना होंदा, दरवाजा पहले होंदा है। घर बाद दे सो दर के हा, सो घर के हा जित वै सर्व संभाले। एक होर भी अर्ज करदे हां, परमात्मा निराकार है, आकार तो रहत है। इनू बयान करके मैं अगे चला। सारा आकार उस तो आउंदा जिहदा कोई आकार नहीं, सारे रूप उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रूप नहीं, सारे रंग उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रंग नहीं। चकर चैन अर बन जात अर पात नहिं जे, रूप रंग अर रेख बेख को कह न सकत, अरूप हैं अनूप हैं। या इंज कह लो, सारे मजहब भी उस तो आउंदे ने जिहदा कोई मजहब नहीं है। ऐ शब्द भी सुन लो महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी दे, नमस्तं अमजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब नहीं। नमस्तं अमजबे, नमस्तस्त अजबे, हे अजब स्वरूप परमात्मा तैनू नमस्कार, तेरा कोई मजहब नहीं। ना तू हिंदू है, ना तू मुस्लिम है, ना तू सिख है, ना तू ईसाई है, ना तू यहूदी है, ना तू पारसी है, ना तू जैनी है, ना तू बौद्धी है, तेरा कोई मजहब नहीं, तेरी कोई जात पात नहीं, तेरे कोई तात मात नहीं, तेरा कोई मजहब नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बड़ी हिम्मत ते बड़ी जुरत दिखा रहे ने थे, नमस्तं अमजबे, नमस्कार है प्रभु तेनू, तू अमजहब है, तेरा कोई मजहब नहीं। मजहब एक रस्ता है, मजहब का अगर कोई माण भी कर रहा है तो रस्ते दे चे, ठीक है रस्ते चे, घर तक पहुंचने वास्ते रस्ता चाहिए। घर पहुंच गया कोई मजहब नहीं, क्योंकि जिसका घर है, जिसके घर दे चे जाना है, उसका कोई मजहब नहीं। सारिया नदियां सागर की तरफ जांदियां ने, हर नदी का किसी मुल्क नाल भी संबंध है, कुछ धार्मिक क्रियावां नाल भी संबंध है, इलाके नाल भी संबंध है, ते हर नदी का अपना नाम भी है। ये गंगा है, जमुना है, गोदावरी है, नर्मदा है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चनाब है, जेलम है, ब्रह्मपुत्र है। इन्हां दा इलाकियां नाल और मुल्क नाल संबंध है। असी कह सकते हैं दरिया हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान दे च वगदा है। फिर इन्हां दे नाम ने, फिर दजला है, फरात है, ये इराक दे विच वगदे ने, तो मुल्क ते इलाके दा संबंध उन्हां नाल जुड़ंदा है भी। ये दरिया इराकी ने, इराक दे ने, उत्थे वगदे ने, दजला फरात उत्थे वगदा। नील नदी मिस्र दे च वगदी है, तो असीं कह सकदे हां इह ते मिस्री है, इजिप्शन है, मिस्र दे च वगदी है।

लेना, ना वो हिंदू है, ना सिख है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, ना जैनी है, ना बौद्ध है, ना यहूदी है, ना पारसी है। जितने चिर तक पारसी है, यहूदी है, हिंदू है, इतने चिर तक नदी तो है, सागर नहीं है, नहीं है, समुंदर नहीं है। मेरे ख्याल इतने ही शब्द बर्दाश्त कर सकोगे, इतना ही कहना मैं। कई बड़े तार्किक होंगे, कट्टर बड़े होंगे, और कमाल दी गल, अकल तो बिना अकल का दावा, अकल नूं ते छिके ते टंगे होए अकलमंद होने का दावा धार्मिक जगत दे इस तरह चलता है। फिर पता की है, किसी एक कद नूं अकल आ जाए तो इस तरह की गल कवे, फिर कटो उसके बंद बंद, बिठाओ उसनों तत्ती तवी, कटो उसकी गर्दन चांदनी चौंक दे, ईसा सूली ते लटकता पिया। मुहम्मद साहब के बदर की लड़ाई दे अगले दो दन तोड़ दिते गए। सुकरात नूं जहर का प्याला दे के मार दिता गया। हुण पुछिए, एक नूं तुसी सूली ते टंगया, एक नूं जहर दे के मार रहे, एक दे दन तुसी तोड़ दिते, एक नूं तत्ती तवी ते बिठाया, एक नूं चांदनी चौंक दे गर्दन कट दिती है। फिर उन्होंने फरजंद, उन्होंने बच्चों नूं, पोतरियां नूं तुसी दीवार दे चिणदे पए हो, किसी दे बंद बंद कट रहे हो, किसी नूं उबल दी देग दे च बिठा रहे हो। पहले दसो, इन्हां ने चोरी कीती है, यारी कीती है, बलात्कार कीता, किधरे कतल कीता है? एक भी जुर्म नहीं, इन्हों का एक कसूर है कि यह बेकसूर। कसूर वारां दे कठ दे च बेकसूर होना भी एक कसूर है, गुनाहगारां दे कठ दे च बेगुनाह होना भी गुनाह है, मूर्खां दे कठ दे च इतना स्याणा हो जाना भी किसी वध हले ते मूर्खता हो जाती है। देखो, सारा बनारस कह रहा है कबीर पागल है, लोग कहें कबीर बौराना, ये तो बौरा है, पागल है। हुण बनारस वासियां नूं कौन दसे सारे बनारस दे च इक्को ही ते स्याणा है, बाकी दे सब पागलां दी भीड़ है। हुण एक स्याणा होवे ते भीड़ पागलां दी होवे ते दुनिया ते बहु गिणती, प्रभाव तो बहु गिणती का, घट गिणती का तो है। इस वास्ते डॉक्टर मुहम्मद इकबाल ने 1934 के तनज भी कर दिती सी, जमहूरियत एक तर्ज हकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। जमहूरियत डेमोक्रेसी लोकतंत्र, जमहूरियत एक तर्ज हकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तो ला नहीं करते। कहिंदा जमहूरियत की है, डेमोक्रेसी की है, गिनते। अगर खोते 900 ने ते घोड़े सिर्फ 100 ने, तो खोते जित जाएंगे, घोड़े हार जाएंगे। गिद्दड़ 900 ने ते शेर सिर्फ 100 ने, शेर हार जाएंगे, गिद्दड़ जित जाएंगे। गौवां सिर्फ 100 ने ते सूअर 900 ने, गुस्ताखी माफे सूअर जित जाएंगे, गौवां हार जाएंगे। मैनू कहण दोगे, बहुत सारे मुल्कां दे सूअर ही जित जाते, गौवां ते हार जांदियां थोड़ियां, शेर ते हार जांदे ने थोड़े। जमहूरियत एक तर्ज हकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तो ला नहीं करते। फिर ये महान शायर जिसने देश दी वंड तो पहले एक कौमी तराना लिखिया सी, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा। इन्हें एक होर कीमती गल भी आखी है, जलाले पातशाही हो शख्सी हकूमत किंगडम, जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, या डेमोक्रेसी का तमाशा होवे या जमहूरियत का तमाशा होवे, या शख्सी हकूमत का करिश्मा होवे, शक्ति होवे,
ਮਾਣ ਮਰਿਆ

आप ही कथा कर रहे हैं, आप ही सुनदाते हैं और कोई नहीं है। ते जो इस नू लई है ते हैरानगी होवेगी अगर इस सोच समझ ते इस अवस्था तो अगर मनुख तले है तो कुछ पकड़ दिच नहीं आएगा, तालमेल नहीं बैठे। अगर इत्थे भी कथन ते सुनना वो करता ही है तो फिर तो सब कुछ करता है। सबको काल सबन को करता जो कुछ भी है, अगर तेनू कुछ महसूस हो रहा है तो महसूस होना भी करता है, ये भी कृत है उस करते दी। अगर तेनू कुछ दिखाई दे रहे है, सुनाई दे रहे है, तू कुछ बोल रहे हैं, तू कुछ बना रहे हैं, सब करते दी कृत, तू नहीं है, तू स्वयं कृत है। तू कितों करता हो गया, तू ते खुद कृत है। बस जद मनुख खुद कृत ना मन के खुद करता मन लेंदा है तो इस दे ते जिम्मेवारियां बड़ियां आ जातियां, तो जिम्मेवारियां दे तनाव नाल ये दुखी होंदा है। वरना ये करतापन इस तो हट जाए तो खिमा करनी नर्क की ते स्वर्ग की। पाप पुन ते भई कहावत को नरक को स्वर्ग बचावत, स्वर्ग की सुख ते नरक की दुख, की दुख होंदा ते की सुख होंदा कुछ भी नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर वै नहीं जाके कंचन माटी वाने, इत दोवे बराबर न कृत है, करते दी कृत है, दुख सुख करते दी कृत है। मेरी जिम्मेवारी कुछ नहीं, मैं ही नहीं हाँ तो मेरी जिम्मेवारी की गुस्ताखी माफ हो रहे है, सब कुछ पीता नहीं जा रहे है। जब अपन आप उदारे तो शगन अपशगन कहां विचारे, इतनी समझ आ जाए मनुख आज पूरन हो गया, इतना बोध पैदा हो जाए आज गल बन जाएगी। पर मैं अर्ज करा अगर मनुख ये सोचे कि मैं अपने दुख नो, मैं अपनी विपता नो अपनी सियाणप नाल दूर करांगा। अज तक ते बड़े बड़े साइंटिस्ट विचारक दार्शनिक फिलोसफर मनुख दियां समस्यावां दा हल नहीं लभ सके, कोई भी नहीं हल लभ सके, अज तक ते नहीं लभ सके। इतने दार्शनिक, इतने चिंतक, इतने साइंटिस्ट, इतने आलम फाजल, फिर भी दुनिया दुखी। तो महाराज कहते सियानप काहो काम न आत, जो अनरूप्यो ठाकर मेरे होए रही सो बात। कुछ भी कम नहीं आएगी, जो उसने अनरूप है हो रहे, सब कुछ हो रहे, तो भी होया है, सब कुछ हो रहे है। पर मैं दुखी क्यों हुआ, तू अपने आप नो कृत नहीं मनदा, करता मनदा। करतापन शुभ नाल जुड़ गया, करतापन अशुभ नाल जुड़ गया, तो दोहां ने दुख पैदा कीता है। बेईमानी ने ते दुख पैदा कीता, गुस्ताखी माफ दान ने भी दुख पैदा कर देता, कुसंगत ने ते दुख पैदा कीता, पता नहीं बर्दाश्त कर सकोगे कि नहीं, सत्संग करके भी सुख कोई नहीं मिले, वही कल्पना वही दुख। कारण मैं ते मौजूद हां अशुभ दे ते शुभ दे, मैं ते मौजूद हां पुन दे च पाप दे, मैं ते मौजूद हां चंगे दे ते माड़े दे, बुरा भला कहो किसनू कही है, जा सगले जी तुम्हारे की बुरा है की भला है। इस मैं एक पासे कर ते तेनू पता चल जाएगा, अंधेरे दी भी अपनी कोई दुनिया है, प्रकाश दी भी अपनी दुनिया है, और दोवें ओही ने, उसे दी कृत है। नमो अंधकारे नमो तेज तेजे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते इत्थे तक कहिंदे नमो कलह करता नमो शांत रूप है, हे शांति दे करता तेनू नमस्कार, पर